किए संत मीता कृपाल पे बड़ भागी महा सुख पाया बरना साको रेन नानक जन पागी मलार महला पंजवा माई मोहे प्रीतम देह मिलाई सगल सहेली सुख पार सूते जेह कर लाल बसाई रहा मोहे अवगन प्रभ सदा दयाला मोहे निर्गुण किया चतुराई करो ओम बराबर जो प्रेय संग राती एह होमै की ठी ठी ठाई पेई न मानी सरन एकता की गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमिक मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बिहाई मलार महला पंजवां बरस मेघ की बरस मेघ जी तिल बिलम ना लाओ बरस प्यारे मन्हे सदारे होए आनंद सदा मन

जो सहब में खाप कमाए हम बलिहारी तन को जो हर चरणी रहे लाए जो जल में कम अलपत है ऐसी बनत बनाए सो से किए।

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए अंक उतार संक उतार मोया जित कर जाइए तित जीव दया मर मार अनहद शब्द सुहावण है पाइए गुर विचार अनहद बाणी पाई है तै हो में होए विनाश सतगुर सेवै अपना हो सद कुर्बाने तास खड़ दरगह पहनाइए मुख हर नाम निवास जय देखा तै रब रहै शिव शक्ति का मेल त्रिह गुण बंदी दे होरी जो आया जग सो खेल वे जोगी दुख बिछड़ै मन मुख लहे ना मेल मन बैरागी कर वसै सच पै राता होए ज्ञान महारस भोग वै बहुत भूख न होए नानक एह मन मार मिल पी फिर दुख न होए श्री राग महला पहला एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान शब्द ना पीजै सकता दुर्मत आवन जान साधु सतगुर जे मिलै ता पाइए गुणी निदान मन रे हो मैं छोड़ गुमान हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगह मान रहाओ राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर रस भोगणै संत सभा मिल ज्ञान नितहन सर प्रभ सेवया सतगुर दिया नाम कूकर कूड कमाइए गुरनिंदा पचे पचान पर मैं भूला दुख कणो जम मार करे खुलहान मनमुख सुख ना पाइए गुरमुख सुख सुभान एथे तंद पटाइए सच लिखत प्रवाण।

रहाओ। सजन मेरे रंग लै जाए सुते जी राण, हम भी वंजा डुमणी रोवा चीणी बाण। की ना सुने ही गोरी है अपन कन्नी सोए, लगी आवे साहुरै नितना पेय होए। नानक सुती पेय जान विरती सन, गुणा गवाई गंठड़ी अवगुण चली बन।

समाये। बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाइए सच सोए। असर संघारे सुख वसै जो तिस पावे सो होए। जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, इहो सहसा मूलै नाही पाओ जा लाए जन कोए। नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मिलावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लो पाणै, सेवा करे विडाणी अपना धर्म गवावै। बुझे नाही अंधन दुख बिहानी, मन मुख अंधना चेतई डुब मुए बिन पाणी। मन रे सदा भजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसरना जाई रहाओ। इहो शरीर माया का पुतला विछों मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जमण मरना मन मुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति जोत मिलाई। सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छा सो फल पाए। जत सत तप पवित शरीरा हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुर की शरणागति हो तिन कै बल जाओ। दर सचै सच्ची वड्याई सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मन मुख कर्म कमावणै ज्यों दुहागण तन सिगार, सेजै कंतनै आवई।

संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए रहाओ। गुरमुख सदा सुहागणी पिर राख्या उतार, मिठा बोले निव चले सिज रवे पतार। सुभावंती सुहागणी जिन गुर का हेत अपार, पूरे भाग सतगुर मिले जा भागे का उदो होए। अंतरो दुख भ्रम कटिए सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चले दुख ना पावे कोए। गुर कै पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिना प्राप्त तिन पिया होमै विचो कोए। नानक गुरमुख नाम त्याई

सब दी सलाही है रंगे सहज सुभाई सच्चे सच समाया समाया मिल रहे न विछड़ जाए जो किश करना सो कर रहया अवरना करना जाए चिरी विशुन्य मिलियन सतगुर पन्ने पाए आपे कार कराए सी अवरना करना जाए मन तन रता रंग स्यो होमे तज बेकार एहन सुहृदय रब रहे निरपो नाम निरंकार नानक आप मिलायन पूरे शब्द अपार श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निदान है अंत ना पाया जाए कथनी बदनी ना पाईए होमे विचो जाए सतगुर मिलिए सद पैर चै आप वसै मन आए पाई रे गुरमुख बूजै कोए बिन बूजै कर्म कमावणै जन्म पदारथ खोए रहाओ जिनी चाख्या तिनी साध पाया बिन चाखै परम भुलाए अमृत साचा नाम है कहना किछु न जाए पीवत हू परवान पहा पूरे शब्द समाए आपे दे ता पाईए होर करना किछु न जाए देवन वाले के हाथ दात है गुरु द्वारे पाए जिहा कि तोनो तिहा हो आज हे कर्म कमाए जात सत संजम नाम है बिन नावे निर्मल ना होए पूरे भाग नाम मन वसे

सजाए। मान रहे दूजा पाओ चुकाए, अंतर तेरे हर बस है गुर सेवा सुख पाए रहाओ। सच बाणी सच शब्द है जा सच।

ना पाईनी कूड़ मुठे कूड़ यार। हाँ मैं करता जगमुआ गुर बिन कोर अंधार, माया मोवे सारिया सुखताता दातार, सतगुर सेवै ता उबरै सच रखे उरतार। कृपा ते हर पाईऐ सच शब्द विचार, सतगुर सेव मन निर्मला होमै तज बेकार, आप छोड़ जीवत मरै गुर कै शब्द विचार, धंधा तावत रह गए लागा सच प्यार, सच रते मुख उजलै तित साचै दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जीता करै।

लाती जा केस हौ सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए सतगुर का भाणा मन लई विचों आप गवाए एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए नामे ही ते सुख पाईऐ सच्चे शब्द सुहाए मन मेरै आनंदन जाग हर चेत अपनी खेती रख लै कूंज पड़ेगी खेत राओ मन किया इच्छा पूरिया शब्द रहा भरपूर पै पाए भगत करै दिन राती हर जियो वेखै सदा दूर सच्चै शब्द सदा मन राता प्रम गया शरीरो दूर निर्मल साहिब पाया साचा गुणी गहीर जो जागै से उबरै सूते गए मुहाए सच्चा शब्द ना पछाण्यो सुपना गया विहाए सुन्ये कर का पाहुणा ज्यो आया त्यो जाए मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए सब किश आपे आप है होमै विच कहन ना जाए गुर कै शब्द पछाणिए दुख होमै विचो गवाए सतगुर सेवन अपना हौ तिन कै लागो पाए नानक दर सच्चै सचियार है हौ तिन बलहारै जाओ श्री राग महला तीजा जे वेला वक्त विचारी है ता कित वेला भगत होए अंदर न मै रत्या सच्चै सच्ची सोए एक तिल प्यारा विसरै भगत कनेही होए मन तन शीतल साच सिहो सासना बिरथा कोए मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत ताती है जा हर बसै मन आए रहाओ सहजै खेती राही है सच नाम बीज पाए खेती जमी अगली मनुआ रजा सहज सुभाए गुर का शब्द अमृत है जित पीतै तिख जाए ए मन साचा सच रता सच्चे रहया समाए अखण वेखण बोलना शब्दे रहा समाए बाणी वजी चौजुगी सचो सच सुनाए हौ मैं मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए तिन को महल हदूर है जो सच रहे लिवलाए नदरी नाम त्याई विण कर्मा पाया ना जाए पूरे भाग सतसंगत लहै सतगुर पेटै जिस आए अंध नामे रत्या दुख बिख्या विचो जाए नानक शब्द मिला बड़ा नामे नाम समाए श्री राग महला तीजा अपना पौ तिन पायन जिन गुर का शब्द विचार सतसंगति सदा मिल रहै सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन हर राख्या उरतार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार

बिन गुर रोग ना तुटई होमै पीड़ ना जाय गुर प्रसादी मन वसै नामै रहे समाय गुर सबदी हर पाई बिन पसबदे परम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाह तू फिर आवण जान ना होए रहाओ हर इको दाता वरतदा दूजा आवरना कोय शब्द सलाही मन वसै सहज ही सुख होए सब नंदरी अंदर वेखदा जय पावै तै दे होमै सबा गणत है गणते नो सुख नाहे बिकी कार कमावणी बिखी माहे समाए बिन पिर ना बिन नावै ठौर ना पायनी जमपुर बदै जमपुर दुख सहाय जियो पिंड सब तिसदा तिसे दा आधार गुरप्रसादी बुझियै ता पाए मोख द्वार नानक नाम सलाह तू अंत ना पारावार।

भगत भंडार। मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाइए, हर स्यो रहे समाए रहाओ। सच्ची भगती मन लालतिया, रत्ता सहज सुपाए, गुरसबदी मन मोहया, कहना किछु ना जाए। जिह वारती शब्द सच्चै, अमृत पीवै रस गुण गाए, गुरमुखे हो रंग पाइऐ, जिसनु कृपा करे रजाए। संसाय हो संसार है, सुत्या रहन विहाए, अपने भाणे कड लैन, आपे लयन मिलाए, आपे ही आप मन वस्या, माया मोह चुकाए।

सत गवाए। गुर प्रसादी मन बसै मलहो में जाए समाए, ज्यो अंधेरे दीपक बालिए त्यो गुरु ज्ञान अज्ञान तजाए। हम किया हम करें गए हम मूरख गावार, करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार। माया जेवड़ दुख नहीं सब भव तक कै संसार, गुरमति सुख पाई है सच नाम उर तार। जिसनू मिलै सो मिलै हो तिस बल हारे जाओ, ई मन भगती रत्या सच बाणी निज थाओ।

दरड़ाए रहाओ। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लग्या कड़ रतन देवै परगास। तन बड़ भागी बड़ भागिया जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख न भेटो से भागहीन वसकाल। वे फिर जोन पवाई है बिच विष्टा कर बिकराल, उन्ना पास दुआस न पिटी है जिन अंतर क्रोध चंडाल। सतगुर पुरख अमृत सर बड़ भागी नावै आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दरड़ा।

करे साबास। हो गुर सलाहे न रजऊ मैं मेले हर प्रभ पास। सतगुर नो सब को लोचदा जेता जगत सब को ए। बिन भागा दर्शन ना थिया भागहीन बहरोए। जो हर प्रभ पाणा सोथिया तुर लिखिया न मेटै कोए। आपे सतगुरे आप हर आपे मेल मिलाए। आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलह समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत भला कित बिद मिलै रस खाए। जाय पुसा सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओ वे परवाह न बोलनी हो मल मल धोवा तिन पाए। पाई रे मिल सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कढै हो मैं मार रहाउ। गुरमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए। सतगुर बचन रतन है जो मने सो हर रस खाए। से बड़पागी बड़ जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वाण तैण सबत है भागहीन नहीं खाए। बिन सतगुर पल्लै ना पवै मन मुख रहे बिल लाए। ओए सतगुर

ऐसा तें जग परम लाया, कैसे बुझे जब मोया है माया। रहाओ कैद कबीर छोड़ विकरास इत संगत।

में समेद अमृत भिख चाखी तो पंच परगट संतापे जप तप संजम छोड़ सो किरत।

दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो।

जत खोजत दर्शन चाहे, पात पात बन बन अब गाहे। निर्गुण सारगुण हर हर मेरा कोई है, जियो आन मलावे जियो। खट शास्त्र विचरत मुख ज्ञाना, पूजा तिलख तीरथ इस नाना। नबली करम आसन 84।

एक खेन हृदय साथ न आवे, जोगी बहड़ बहड़ उठता वे जियो, कर कृपा मोहे साध मलाया, मन तन शीतल तीरज पाया, प्राभ्य बनासी बसिया कट पीतर, हर मंगल न

पाने हर गुण गुरमुख गवाहा, पाने परम पवे बोजुनी, सब कुछ तिसेर जाई जियो। ना को मूर्ख ना को सियाणा, बरते सब किश तेरा पाणा। अगम अगोचर ब्यांथे अथाह, तेरी कीमत कहन ना जाई जियो। खाक संतन की देओ प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे। दर्शन पेखत मन

गोविंदे ऊचे अथा बेअंत स्वामी सिमर सिमर हो जीवा जियो दुख पंजन निदान अमोले निरपो निरवैर अथा तोले अकाल मूरत अजूनी।

सगळ संतन पे बसत एक मांगू करू बनंती मान त्यागो बार बार जाई लख बरिया दियो संतन की तूड़ा जियो तुम दाते तुम पुरख बदाते तुम समर्थ।

हार हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माझ महल्ला पंजमा अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बडारन हरिया। आबर साध चक सगले देखे, मन हर रस

परापत जिस शब्द गुरु मन बुठा जियो, जिन हर रस पाया सो त्रिपति गाना, जिन हर साध पाया सोना हिंडलाना, तिसे परापत हर हर नामा जिस मस्तक पगीठा जियो, हर एक सहत आया बरसाने बथेरे, तिस लग मुक्त पे कनेरे, नाम नदाना गुरमुख पाइए, कहो नानक बिरली डीठा जियो, माझ महल्ला पंजवा निद सिद्ध रिद्ध, हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ घैर गंभीरे, लाख खोट खुशियाँ रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो, दर्शन पेखत पे

बासरे तीरथ नहाय कहै सब उतरै बहो राव कमावह होए निसंक जम पर बांध करै कालंका कुंगर बांध बजावे ताला अंतर कपटा फिर बेताला वर्मी मारी साप न मुआ प्रभ सब किस जान जिन तू किया पुअर ताप गेरी के बस तरा अपदा का मारिया गृह ते नसता देश छोड़ परदेसे तहाया पंच चंडाल नाले लै आया कान फराए हिराए टूका कर कर मांगे त्रिपतावन ते चूका बनता छोड़ बद नदर पर नारी वेसन पाइया महा दुखियारी बोले नाही होए बैठा मोनी अंतर कल्पा पवाइया जोनी अन ते रहता दुख देही सहता हुक्म न बूझा व्यापया ममता बिन सत गोरा किने ना पाई परम गते पूछो सगल बेद सिमरता मन मुख कर्म कर आ जाई ज्यों बालू कर ठौर न ठाई जिस नौ पहे गोबिंद दयाला गुर का बचन तेन बाध्यो पाला कोट मदे कोई संत दिखाया नानक तिनका संग तराया जे होवै भाग तां दर्शन पाइया आप तरै सब कुटुंब तराइया रहाओ दूजा परपाती महला पंजवां।

दे ऊचे ते ऊचा प्रभ थान हर जन लावह सहज त्यान दास दासन की बाशों तुहूरा सर्व कलाव प्रीतम परपूरा मात पिता हर प्रीतम नेरा मीत साजनव परवासा तेरा कर गहलीने अपने दास

हे कह माहे निधाना कहाँ उड़ीसा मजन किया क्या मसीत सिर नहाए दिल में कपटा निवाज गुजारा क्या हज का बे जाए इत औरत मरदा साजे

कहत कबीर सुनो नर नरवा परहो एक की सरना केवल नाम जपो रे प्राणी तब ही निहचे तरना प्रभाति अवलव अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पहले को मंदा लोगाओ परम नाव पुहलो पहाय खालकाओ खालकाओ खालक मैं खालक पूर रहो सर्वठाई रहाओ माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारा ना कस पोचा माटी के भांडा ना कस पोचा कुंभारा सब मैं सच्चा एको सोई तिसका किया सब कस होई

मन हर पासारी मन बासा नन पेदी परमत है संसारी गुर कै शब्द एहो मन राता दुबदा सहज समाणी सबो हुकम है आपे निरभौ समत विचारी जो जान जान भजै परखोतम ताची अवगत बाणी नामा कह जग जीवन पाया हृदय अलख बेडाणी पर भाती

पाड़े पुस्तक संध्या बादं सिर पूजस बगल समादं मुख झूठ विभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लिलाटं दोय धोती वस्त्र कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट।

ब्राह्मणः क्षत्रे शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृतः सर्व शब्दं तैक शब्दं जे को जान सपेयो नानक ताको दास है सोई निरंजन देयो एक कृष्णं त सर्व देवा देव देवा त आत्मा है आत्मं श्री वासुदेवस्य जे कोई जान सपेव नानक ताको दास है सोई निरंजन देव। श्लोक सहस्रकृति महला।

कतांच माता कतांच पिता कतांच बनिता विनोद सुत्ता है कतांच प्रात मीत हित बंधव कतांच मोह कुटुंब्यते कतांच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत रहंत संग भगवान सिमरण नानक लब्धं अच्युत तन है। त्रिगांत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधव है त्रिग स्नेहं बनिता विलास सुत है त्रिग स्नेहं गृहार्थ कहै साध सांग स्नेह सत्यं सुख्यं बसांत नानक है। मिथ्यांत देहं खीणंत बलनं वरदंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा अतिथ्य पवनं गणंत स्वासा भयान धर्मं

रचांत तोयंग लेपनंग रक्त चर्मण है नवांत द्वारंग पीत रह तंग बाय रूपंग स्तंभन है गोविंद नामंग नह सिमरांत अज्ञानी जानत अस्थिरंग दुर्लभ देह उदरांत साध शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभांत तोयंग अच्युत गुण अज्ञंग पूर्णंग बहलो कृपाला गंभीरंग ऊंचाय सर्वाग्य अपारा प्रत्यय प्रयंग विश्राम चरणंग अनाथ नाथे नानक शरणं।

नाम नर हर है, अनाथ नाथ गोविंद है, बालहीन बाल केशव है, सर्वभूत दयाल अच्युत दीन बांध दामोदर है, सर्वज्ञ पूरन पुरख भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, काट काट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, जाचंत नानक कृपाल प्रसाद हंग नह बिसरंत नारायण है, नह समर्थं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं तव प्रसाद सिमृते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं पारण पोखण करंत जिया विश्राम छादन देवंत दानं सृजंत रतन जन्म चतुर चेतन है,

सत मित्र प्रहत बांधव नाच दुर्लभं बनिता बिरा सहाय नाच दुर्लभं विद्या परवीणं नाच दुर्लभं चतुर चंचल है दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तत है दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक है सर्वत्र रमणं गोविंद है नानक लेप छेप न लिप्यते बिख्या पयंत मृतं दृष्टा सखा स्वजन है दुखं पयंत सुख्यं भय पीतं ता निरपय है थान बिहुन विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील मम शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिप्यते।

ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है, दयालं सर्वत्र जिया पांच दोख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है, उपदेशं सम्मित्र सत्र है, भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आप त्याग सगल रेणुक है, खाट लखण पूर्णं पुरख है, नानक नाम साध स्वजन है, अजाप होगंत कांद मूलं बसंते समीप केहर है, तत्र गते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते, छलं छिद्रं कोट विघ्नं अपराधं किलबिखमलं परम मोहं मानपमानं मदं माया व्यापितं मृत्यो जन्म प्रमांत नरक है, अनेक उपाव ना सिद्ध्यते, निर्मलं सार संग है जपांत, नानक गोपाल नामं रमंत गुण गोविंद नित प्रत है, तरण शरण स्वामी रमण शील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रपूर्ण है, निराश यास करण सगल अर्थ आल्य है, गुण निदान सिमरत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्वसुखण है, दुर्वचन भेद परमं साकत पिसनं तसुर्जन है, अस्थितं सोग हरखं है क्षीणं ता निरपव है, है अटवियं महानगर वासं तर्म लक्षण प्रभ मया साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं हे अजित सूर संग्राम।

हर नर हर है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पामात पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनेक माया व्यस्तीर्ण है। आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वह भोगण है। प्राम पहान उद्यान रमणं महाबिकट असाध रोगण है।

एकं ततहरियं भूडं ततरियं ऊणं तपरियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हार गोर दयारं। ब्रह्मण है संग उदरणं ब्रह्म कर्म जिपूर्ण है आत्म रतं संसार गहंते नर नानक निःफल है। पर दर्ब हिरणं बहु विघ्न करणं उचरणं सर्व जीयक है। लौ लई तृष्णा अतिपत मन माए कर्म करत से सुकर है। मते समेव चरणं उदरणं पैद उतर है। अनेक पातक हरणं नानक साध संगम न संशय है। महला पांचवा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख्य देहं मड़ीरं मजा रुधिर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञानो परमाणो परजांत्या आकाश है। दीप लू सिखंडन है गछेण नैन पहारेण नानक बिना साधु न सिद्ध्यते। जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीरत साथ चलंथो पणंत नानक सार संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव है। लब्ध्यं सार संगेण नानक सुख स्थान गोपाल भजनं मैं लागर संगेण निम बिरख से चंदन है। निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध न बोहते गाथा गोम्फ गोपाल कथं मथं मान मर्दन है। हतं पंच सत्रेण नानक हर बाणे प्रहारण है। बचन साध मुख बचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मण है। रहंता जन्म मरणेन रमणं नानक हर कीर्तन है।

प्रीत कारणं सुखेण बैण रतनं रचनं कसुंभ रंगण है रोग सोग अभियोग नानक सुख न सुपन है। फोन है महला पांजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाथ कलाम अगम मस्तक लेखावते और जरे हो सब संग अनुप्रो पावते औस्तत कहन न जाय मुख हो तो हारिया मोहि देख दर्श नानक बलिहारिया संत सब

कारण पांच सतावह दूत कवन विद मारणे तीखण बाण चलाए नाम प्रभ पाइया नाम प्रभ तिहाइया हर हां महाबिखा देखात पूरन गुर पाइय सतगुर कीनी दात मूल नाने खुटई खावहो पहुंचाओ सब गुरमुख छुटई।

को सुख विश्रामा, कबीर मेरी जात को सबको हसने हार, बलहार इस जात को जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगम क्या करहे कहा डुला वह जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसह दादे कान ज्यो जिन मन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवै जत पे खाओ तत सोए। कबीर जादन हो मुआ पाछ भया आनंद, मोह मिलो प्रभ अपन अपना संगी पजे गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम ताज पलो सब को, जेने ऐसा कर बुझया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पह अनेक करे कर पेश, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर

कबीर सूख न एह जोग करह जो बहुत मीत जो चित राख एक स्यो ते सुख पावै नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद मन ही ते पाइय पूरन परमानंद। राम पदार्थ पाए कह कबीरा गांठ न खोल नहीं पटन नहीं पारखो नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर तस प्रीत

ओखर पोखर टूटते पहलो न कहे है कोय। कबीर ने गुसाए बह गए थांगी नाही कोय। दीन गरीबी अपनी करते होए सोए। कबीर बैसनों की कुकर पली साकत की बुरी माए। ओह नित सुने हर नाम जस ओह पाप विसाहन जाए।

तन मुक्त होए। यो कह रमे कबीर, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। पाछ लागो हर फिर कहत कबीर कबीर।

घोर जो न चेत है आपनो आद माज ली जह लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जह खिंचे तह जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखला वह लोए, हृदय राम न चेत ही एह जपनी क्या होए।

कबीर साथ समुंदाय मस करो कलम करो बन राय बसुदा कागद जौ करो हर जस लिखन ना जाए कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल कबीर रमैया कंठ मेल चूक है सर्व जंजाल कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए पंचौलर के मार कै रह राम से उलाए रह राम ले उलाए कबीर ऐसा को नहीं हो तन देव फूक अंधा लोग राजा नहीं रहो कबीरा कूक कबीर सती पुकार है चेह

पाए, जो जैसी संगत मिलाए सो तैसो फल खाए। कबीर जा कौ खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू पया जा कौ कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर, ओ चूले ओ चीरिया साकत संग नहेर। कबीर पहार पराई सिर चरै चलियो चाहे बाट, आपने पार है ना डरै आगे औकट घाट। कबीर बन की दादी।

बात। कबीर केसो केसो कुकिये ना सोये आसार, रात दिवस के कुक ने कब हूं के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारख आगे खोल, कोई आए मिले गोगा की ले गो मैं गे मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो, कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो, बाग बाहर पही ना बंब।

नीचे लोयन कर रहो ले साजन कट मांगे सब रस खेलो पी सो किसी लखावो नहीं।

सहज सार जागीले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर पर सुमरार तहता दृढ़ नाम अपार बिमल जास बिथार साधिक सिद्ध सुजान जिया को आधार तूता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रह जगतर जलपद विचार कालिप तर रोग बेदार संसार तापने वार आत्मा त्रिविद तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार तहता हदरथ पायो मान सेव्या गुर परवान साधे अजगर जिन किया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानी अकल गत गुर प्रवान जाकी दृष्टि चल ठान बिमल बुद्ध सुथान पहर सील सनाहो सख्त बेदार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार दृष्ट तरत तम हरन दहन अग पाप पर नासन शब्द सूर बलवंत काम्यर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रत पालन आत्मरत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लग सो पैतर गौर जागत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करै सदा अकाल लिव रहै करण सो इच्छा चार है द्रोम सपूर जो नवै खवै कस बिमल विचार है एह तत् जाण्यो सर्वगत अलख बिडाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी

दर्शन परसे गुरु कै, अठ सठ मजन होए, सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाव सच, सदा सच पाखंत सो है, सच पायो गुर शब्द, सच नाम संगति बहु है।

सोई नाम सिमर गंगे पितामह है, चरण चित्त अमृत रसिया, तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सतकर संगत उदरिया, सोई नाम छल भगत है पवतारण, अमरदास गुर कौ फुरिया, नाम कित संसार किरण सरब सुर तर साख है, उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पख है, जन्म तह सके अथ जित नाम हर हृदय निवस है, सुर नर गण गंधर्व छय दर्शन आसस है, पलो प्रसिद्ध ते ज्योत ना कल जोर कर त्यो, सोई नाम भगत भव जल हरण, गुरे अमरदास तह पायो, नाम त्याव है देव ते तीसर साधिक सिद्ध नार, नाम खंड ब्रह्मांड तहारे, जह नाम समाध्यो हरख सोग सम कर सहारे, नाम सरोमण सर्व

जागत उदाहरण नव निधान भक्त है भवतारण अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है धन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते।

सतगुरु चरण जन परसया से पास परे तर नर पहे जाम गुरु है वल तरह क्या गारव दिजय जाम गुरु है वल लख बाहे क्या किजय जाम गुरु है वल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु है वल शब्द साची साखी सो सच्चा है कार जो गुरु

जैसी राखी लाज भक्त प्रहलाद की। हर नाख सफारे कर आज, फोन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। छीनत वस्त्र दीन भवसाज, सो दामा अपदा ते राखिया। गनका पड़त पूरे तेह काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कर जुग होए। रख दास पाट की लाज, चोल नाम गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप प्राणी हो। शब्द हर हर जप है, नाम नव निध अपाय। रसन अहन सरसाय, सत कर जानी हो। फुन प्रेम रंग पाइय, गुरमुख है त्याई है। अन मार्ग तजहो पजहो हर ज्ञानी हो। वचन गुर हृदय तरहो, पंच भू बस करहो। जन्म कुल उधरहो, द्वार हर मानी हो। जाओ तो सब सुखित तुम वंच बहो। गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप प्राणी हो। गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप सतकार। अगम गुण जान निदान, हर मन तरह ध्यान। अहिंस करो वचन गुर हृदय तहार। फोन गुरु जल बिमल, थाह मज्जन करहो। संत गुर सिख तरहो, नाम सच रंग सार। सदा निर्वैर निरंकार, निरभउ जपै प्रेम गुर शब्द रस। करत दृढ़ भगत हार, मुकत मन भ्रम तजहो। नाम गुरमुख भजहो, गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप सतकार। गुरु गौर गुर करहो, गुरु हर पाहिय। उदद गुर गहर गंभीर, बेअंत हर नाम नगहीर। मन मिलत लिव लाइय, हुन गुरु परमल सरस। करत कंचन परस, मैल दुर्मत हिरत। शब्द गुर त्याइय, अमृत प्रवाह छुटकंत। सद द्वार जिस ज्ञान, गुर बिमल सर संत। सिख नाइय, नाम निर्वाण निदान। हर और तरहो गुरु गौर गौर करहो, गुरु हर पाइय। गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप मन रे। जाकी सेव सेव सिद्ध साधिक, सुर असुर गण तरह। तेतीस गुर बचन सुन कन रे। फुन तरह ते संत हित भगत, गुर गुर करह तरयो प्रहलाद। गुर मिलत मुन जन रे, तरह नारदाद सनकाद। हर गुर मुख तरह, एक नाम लग तजहो रस अन रे। दास बेनत कह, नाम गुरमुख लह। गुरु गौर गुरु गौर गुरु जप मन रे। श्री गुरु साहिब सब उपर, करी कृपा सतयुग जन त्रुह पार। श्री प्रहलाद भक्त उधरियं, हस्त कमल माथे पर धरियं। लख रूप जिय लख्या न जाई, साधक सिद्ध सगल सरणाई। गुर के बचन सत जिय तारहो, मानस जन्म देह निस्तारहो। गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरिया न जाए। गुर प्रसाद प्रभ पाइय, गुर बिन मुक्त न पाए। गुर नानक निकट बसै बनवारी, तिन लहण थाप जोत जगत हारे। लहण पंथ धर्म का किया, अमरदास भल्ले कहो दिया। तिन श्री रामदास सोडी थिर तप्यो, हर का नाम खै दिन निध अप्यो। अप्यो हर नाम खै निध चहु जुग, गुर सेवा कर फल लहियं। मंद है जो चरण शरण सुख पाव है, परमानंद गुरमुख कहियं। प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखण भरणं। सतगुर गुर सेवा लख गत जा की, श्री रामदास तारण तरणं। जय अमृत बचन बाणी साधु जन जप है, कर बिचित चाओ। आनंद नित मंगल गुर दर्शन, सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन। परसन परम पवित्र गते, जीत है जम लोक पतत जे प्राणी। हर जन शिव गुर ज्ञान ग्रते। रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार, मन बंश है जाकी शरण। सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरण। संसार अगम सागर तुल्हा, हर नाम गुरु मुख पाया। जगना जग जन्म मरण भगा, ए आई है प्रतीत। प्रतीत ही आई तिन जिन जन कै, तिन को पदवी उच्च पही। तज माया मोह लोभ अर लालच, काम क्रोध की वृथा गई। अवलोक्य ब्रह्म भरम सब छुटकिया, दिव्य दृष्ट कारण करण। सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरण। प्रताप सदा गुर का खट खट, प्रगास पया जस जन कह। एक पढ़ है सुनह गावह, पर बात है करह इस अनान।
ਇਸਨਾਨ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੁਧ ਮਨ, ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਬਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ, ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਰਸ ਕਉ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੇ ਧਿਆਨ ਧਰੰ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗੰਨਾਥ, ਜਲ ਥਲ ਮਹਿ ਰਹਿਆ, ਪੂਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਬਰਨੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਲਖ ਗਤ ਜਾਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਣ ਤਰਣੰ। ਜਿਨਹੋ ਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਰੁਹ ਜਾਨੀ, ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ, ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ ਇਕ ਮਹਿ, ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ, ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰ।

का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवाय, आपे चंद सूर प्रगासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया कट कट वासा, आपे नर आपे फरनारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सभा विचार वाह वाह का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, मान है ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाई है परमार्थ सतसंगत सेती।

आई मोह मल बिवस कियो काम गह के सपछाड़ो क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान से झाड़ो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो हो सो मन भव सागर बंध्यो सिख तारे सो प्रसन्न सरिया तपत सचाओ तख्त जोग भोग संयुक्त बल गुर रामदास सच सल्य पाण तू अटल।

भय निरपो माड़यो लाख मह अलख लखायो अगम गोचर गत गभीर सतगुर परचायो गुर परचय परवाण गुर परचय परवाण राज मह जोग कमायो तहन तहन गुर तन अपहर सर सुपर परायो गुरगम प्रमाण अजर जरयो सर संतोख समायो गुर अर्जुन कलिचर तै सहज जोग निज पायो अम्यो रसना बदन भर दात अलख्य पार गुर सूर शब्द हो मैं निवार्यो पंचाहर निदल्यो सुन सहज निज कार सहार्यो हर नाम लाग जग उधर्यो सतगुर हृदय बसायो गुर अर्जुन कलिचर तै जन कह कलश दी पायो सोरठे गुर अर्जुन पुरख प्रमाण पारथाओ चाल नहीं निजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो भव जल सायर सहित नाम हरि का बोहिथा तो सतगुर संहेत नाम लग जग उधरियो जगत उदारण नाम सतगुर तुठ पायो अब नाहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर राम दियो गुर नाम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखाओ नयण सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख पर तख लिखियो अछार मस्तक थोर प्रगट ज्योत जग मगै तेज भूमंडल छाया पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूर्त सदा थिर लाए चित सनमुख रहो काल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर हो तेह जन जाचा जगत्र पर जानियत बासुर रहन बास जा कोहित नाम से हो परम तीत परमेश्वर के रंग रंगे हो बासना ते बाहर पै देखियत ताम से हो अपर परम पर

गुर भगत कहे तो पाए रहो मिल राम स्यो। अंत न पावत देव सवै मोन इंद्र महाशिव जोग करी। फोन भेद बिरंच विचार रहे हर जाप न छाड़ो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जगतारन का गुर जोत अर्जुन माहे तरी। जग और न जाहे महातम मैं अवतार्यो जग रयान कियाओ। तिनके दुखत कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत ना पियाओ। एह पद्धत ते मत जू कह रे मान भेद बिभेद न जान बिया। परता चिरदय गुर

काल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदार नाम बस है सांतर जस हृदय दुख दारिद्र निवार नाम निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान बच जिन जानयो भयो ते संसर सोई तारण गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पार पहन मथुरा कछ भेद नही गुरे अर्जुन प्रतख हार अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बाची है वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ठुले नाम अमृत मुख लिया गुरे अर्जुन सिर छतर आप परमेश्वर दिया मिल नानक अंगद अमर गोर गुर रामदास हर पह गया हर वंश जगत जस संचरयो सुकवन कह श्री गुर मोयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो रहस कियो सुरदेव तोहे जस जय जय जंप है असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंप है काटे सो पाप तिन नरहो के गुर रामदास जिन पायो छत्र सिंहासन पृथ्वी गोरे अर्जुन कौ दे आयो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सलोक वारा ते बधीक महला पहला उतंगी पैयो हरी गहरी गंभीरी ससड़ सुहिया किव करे निबण न जाए थणी गच जे लगा गड़बड़ी सखिए तौल हरी से पी टह दे डिठ मैं मुंदना गर्भ थणी सुन मुंदे हरणा किए गूड़ा बैण अपार पहला बस सियाण कै ता की चै बापार दोही जिचै दुर्जना मित्रा कूजै कार जित दोही